श्रोताओं सुनते हैं पंडित उल्लास कशाळकर जी ने गाई हुई संत यारी की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है श्रीनिवास खड़े जी ने।

भक्ति सुधा इंटरनेट रेडियो स्टेशन पर सुनिए ईश्वर भक्ति के अमित स्वरों का हिंदी भक्ति संगीत कार्यक्रम भक्ति सुमन। भक्ति सुमन सुनिए हर दिन दोपहर 2:30 बजे।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना, इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और स्वर है पंडित राजन और साजन मिश्रा जी का।

श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना, इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और स्वर है पंडित राजन और साजन मिश्रा जी का।

0: भक्ति सुधा आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं सुनते हैं शकील बदायूनी की गीत रचना, संगीत है नौशाद और स्वर है मोहम्मद रफी।

श्रोताओं, अब सुनते हैं पंडित नरेंद्र शर्मा जी की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है श्रीनिवास खड़े जी ने और गाया है लता मंगेशकर जी और पंडित भीमसेन जोशी जी ने।

श्रोताओं सुनते हैं पंडित उल्लास कशाळकर जी ने गाई हुई संत यारी की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है श्रीनिवास खड़े जी ने।

ओम शनैश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम पुच्छनायकाय नमः, ओम नवग्रह रक्षाम कुरु कुरु नमः, ओम मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु तेषु हृदयं त्वयितोषमेति, किं विक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, कश्चित मनोहरति नाथ भवानत एहि। ओम नमः श्रीमन बलभद्र जय विजय अपराजित भद्रम भद्रम कुरु कुरु स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्व विघ्न

धरणाय महानमस्याय स्वरूपाय दीर्घारिष्टम विनाशय विनाशय नाना प्रकार भोगप्रदाय मम। आपण जेव्हा दुसऱ्या करता म्हणतो त्यावेळेला त्याचे नाव उच्चारून यजमानस्य असं म्हणून पुढे म्हणावे। सर्वारिष्टम हन हन पच पच हर हर कच कच राजद्वारे जयम कुरु कुरु व्यवहार लाभम वर्धय वर्धय रणे शत्रुम विनाशय विनाशय वीनापत्ययोगम निवारय निवारय संत्युतिप्तिम कुरु कुरु पूर्णम आयुः कुरु कुरु स्त्री प्राप्तिम कुरु कुरु हुम फट स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते विश्वमूर्तये नारायणाय श्री पुरुषोत्तमाय रक्ष रक्ष युष्मदधिनम प्रत्यक्षम परोक्षम वा अजीर्णम पच पच विश्वमूर्ते अरिन हन हन एकाहिकम द्व्याहिकम त्र्याहिकम चातुर्थिकम ज्वरम नाशय नाशय चतुरधिकान वातान अष्टादश क्षय रोगान अष्टादश कुष्ठान हन हन सर्व दोषान भंजय भंजय तत्सर्वं नाशय नाशय शोषय शोषय आकर्षय आकर्षय मम शत्रुं मारय मारय उच्चाटय उच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तंभय स्तंभय निवारय निवारय विघ्नान हन हन दह दह पच पच मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय विद्रावय विद्रावय चक्रम गृहीत्वा शीघ्रमा गच्छा गच्छ चक्रेण हन हन परविद्यां छेदय छेदय चतुर्शीति चेटकान विस्फोटय नाशय नाशय वातशूला विहत दृष्टिन सर्प सिंह व्याघ्र द्विपद चतुष्पदान आपरे बाह्यांतरादि विवंतरिक्षगान अन्यान पि कश्चित देश काल स्थान सर्वान हन हन विषम मेघ नदी पर्वतादीन अष्टव्याधीन सर्वस्थानानि रात्रिदिन पथग चोरान वशमानय वशमानय सर्वोपद्रवान नाशय नाशय परसैन्यम विदारय विदारय परचक्रम निवारय निवारय दह दह रक्षाम कुरु कुरु। ओम नमो भगवते ओम नमो नारायण हुम फट स्वाहा ठट ठ ओम राम ह्रीम हृदयस्व देवता। फलश्रुति। एषा विद्या महानाम्नी पुरा दत्ता शतक्रतोः असुरान हन्तु हत्वा तान सर्वाश्च बलिदानवान यः पुमान पठते नित्यं वैष्णवीं नियतात्मवान तस्य सर्वान हिंसति यस्यात दृष्टिगतं विषम अन्यदृष्टिविषम चैवन देयं संक्रमे ध्रुवं संग्रामे धारयत्यंगे उत्पात शमनि स्वयं सौभाग्यं जायते तस्य परमं नात्र संशयः कुते सद्यो जयस्तस्य विघ्नं तस्य न जायते किमत्र बहुनोक्तेन सर्वसौभाग्य संपदः लभते नात्र संदेहो नान्यथा नदितं भवेत गृहीतो यदि वा यत्नं बालानां विविधैरपि शीतः चोष्णतां याति उष्णः शीतमयो भवेत नान्यथा श्रुते विद्यां यः पठेत कथितां मया भूर्जपत्रे लिखेद्यत्रं गोरचनमयेन च इमां विद्यां शिरोबन्धत् सर्वरक्षां करोतु मे पुरुषस्याथवा नार्या हस्ते बध्वा विचक्षणाः विद्रवन्ति प्रणशन्ति धर्मस्तिष्ठति नित्यशः सर्वशत्रुभयं याति।

मंत्रः समुख्यायाम स्वाहातो वा। पुढील मंत्र हा 22 वेळा उच्चारावा। हरहि ओम उच्चिष्ट देवे नमः, डाकिनी सुमुखी देवी महापिशाचिनी, ओम ऐं ह्रीं ठाठ। द्वाविशत ओम चक्रधरायाः, अहम रक्षाम कुरु कुरु, सर्व बाधा हरणि देवे नमो नमः, सर्व प्रकार बाधा शमनम अरिष्ट निवारणम कुरु कुरु, फट श्रीम ओम कुब्जिका देवे ह्रीं ठस्वाहा, शीघ्रम अरिष्ट निवारणम कुरु कुरु, देवी शाबरी क्रीं ठस्वाहा, शारीरिकं भेदाहं मायां भेदय पूर्णम आयुः कुरु, हेमवती मूल रक्षां कुरु, चामुंडाय देवे नमः, शीघ्रं विघ्न निवारणं सर्व वायु कफ पित्त रक्षां कुरु, भूत प्रेत पिशाचान घातय जादू टोणा शमनं कुरु, सती सरस्वत्यै चंडिका देवै गलं विस्फोटकान विक्षित्य शमनं कुरु, महाज्वर रक्षयं कुरु स्वाहा, सर्व सामग्रीं भोगं सत्यं दिवसे दिवसे देहि देहि रक्षां कुरु कुरु, क्षणे क्षणे अरिष्टं निवारय दिवसे दिवसे दुःखहरणं मंगलकरणं कार्यसिद्धिं कुरु कुरु,

भक्ति सुधा इंटरनेट रेडियो स्टेशन पर सुनिए ईश्वर भक्ति के अमीट स्वरों का हिंदी भक्ति संगीत कार्यक्रम भक्ति सुमन। भक्ति सुमन सुनिए हर दिन दोपहर 2:30 बजे।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना, इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और स्वर है पंडित राजन और साजन मिश्रा जी का।

श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना। इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और स्वर है पंडित राजन और साजन मिश्रा जी का।

0: भक्तिसुधा आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं सुनते हैं शकील बदायूनी की गीत रचना, संगीत है नौशाद और स्वर है मोहम्मद रफी।

श्रोताओं अब सुनते हैं पंडित नरेंद्र शर्मा जी की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है श्रीनिवास खड़े जी ने और गाया है लता मंगेशकर जी और पंडित भीमसेन जोशी जी ने।

श्रोताओं सुनते हैं पंडित उल्लास कशाळकर जी ने गाई हुई संत यारी की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है श्रीनिवास खड़े जी ने।